0: अब रारा चाउचाउ ब्राउन चिकन, ब्राउन भेज र रारा चिज बल्समा पनि उपलब्ध छ।
1: ब्याङ्की खैमत बिले क्योदे एटीएम मोबाइल डे इन्टरनेट ब्याङ्किङ गोप्य विवरण आरि खै बिले तोइ माध्यम क्यारे न्योदे प्रे छली जानकारी रि विषय न्यो कल पर्दिमो समय न्यो ठगदिल खामो ब्याङ्गर वे कर्मचारी बीरा न्योदे प्रे विवरण रि विषय ब्याङ्के निल पर्दिमो न्यो तानी सतर्क तना ठजरे क्या बचेना सिद्धार्थ ब्याङ्गर क्याले जनहितरी जारी सन्देश
2: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।

काटो नि सबै टन्ट मी पुलिस परि परि नजर कमा हेल्प गार्ड मेरो पुलिस